0: भारतीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनिए एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनिए एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम्बा नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: Caio Rádio, Solu é
1: Solu FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sanchit. Solu FM, studio time.
1: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम्बा नगरपालिका पाँच सोलु कुम्बु

कम्प्यूटर थर्मल प्रिंटर क्यूआर स्कैनर लगायत का उपकरण उपलब्ध कराइने विद्युत तथा इंटरनेट सुविधा पुगे अन्य प्रवेश द्वार चेकपोस्ट में समेत ई टिकटिंग सेवा क्रमश विस्तार कर योजना रहेको छ। मंत्रालय ने आउँदो 6 महीना भित्र देशभर का सबै राष्ट्रीय निकुंज तथा आरक्षण में ई टिकटिंग सेवा संचालन में ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। पशुपति क्षेत्र में साउने सोमवार को तैयारी स्वरूप सरसफाई गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साउनको सोमवार को तैयारी स्वरूप गएको हप्तादेखि नै सरसफाई अभियान शुरू

0: 为啥人们来游咱们有把自己的包裹里了啦。
1: 哎呀，一刚才就刚到古代呢。
0: Japanese bahasa pula dengan Japanese orang juga orang itu dia. Gawa Japanese bahasa pula yang orang itu asal.
1: Khususnya ini bangsa bidin sari ini dah. Buru kun thama ramu pada bunga bunga dan cahaya kehubungan. Mau bateri ini mana?
0: Mereka tahu cahaya ini yang itu. Japanese mana kun isi cuma ramu pada bunga. Ani cik proses berani perasa. Thana pada tahun mana macam tu?
1: Awak cinta nama kan sah? Orang Business Global Institute sahun cipta Japanese bahasa pula ani Japanese ani.
0: Aina, ini institut macam mana pernah tu? Orang China tu pernah tak?
1: Orang Business Global Institute, ha? Orang tu minta cuti bisnes asal. Ini Jepun bato ucu sisa hasil gorengan, tetapi Jepun is cuci kuri bato bahasa koksa pelajar ni kesatu. Sabtu ini tes koksa cuti apa ni esok gorengan? Bila jenjek Jepun jana posisi sini gorengan? Tiska sahdi, komnas layak, orang komisi pun layak, backlog ni pas banyak hari ni pun. Jepun mac pernah jana offer gorengan? Jepun ku Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka lagi tak semua jana cuti tak perlu pelajar dah.
0: Sebagai kurang ke semua tu thalai tu. कच्चा संसार में कती शेर हो गए सर
1: सुनो कांचा इस इंस्टीट्यूट में जापानी भाषा कक्षा विभिन्न छह बजे देखिए दिल्ली के पांच बजे सम्मान देने भूल गए कांचन इसलिए आपसे तो सुरक्षित गरीब हले कांचा
0: ना दीदी मोटा इंजन उधर बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तो बाहर भी आ रहे हैं अजू सभी को विश्वासी और भरपूर जापानी भाषा पढ़ाने इंस्टीट्यूट ओनियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट चावल केन टावर छोटूतमा काठमांडू संपर्क
1: रुपाई ब्रोस सुनिए
0: 9855 17979 रा 01 592 26 16 वेबसाइट www.obgi.edu.np Orion Business Global Institute OBGI Education Consultancy Nepal Charahan Chuchipati Kashmir

0: उपभोक्ता अधिकारको उत्तम रक्षण गराउँ, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौं, कारोबारमा विध दूषित लिने र दिने गरौं, कारोबारलाई परदर्शी बनाऊ, नाफाको उद्देश्य भूता भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना गरौं, वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्याचसही नीति गुणस्तर एकिङ गरी मात्र खरिद बिक्री गरौं, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उसुरी गरौं, वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट कृषि पुगे क्षतिपूर्ति मागौं, निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं, भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता छोड्नेमा स्थानीय प्रशासनमा उसुरी गरौं। आञ्चलिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.

0: नेपालमी सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपजिला को मिलन क्षेत्र
1: का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रद भो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया वर्षम बजार में लंच भैई
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: उखल ढुंडा खोटांग को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
2: रहने को आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजान उखल ढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98 42 80 30 00

0: attention. City FM, the studio time.
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: 公式電子名簿を参考にしてください。
1: आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय उक्त प्रदेशद्वारा जनहितमा आज

0: प्रोडो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Surya Fan. The studio time.
2: It's 2 PM. You support me, Roger.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध नगर पालिका 5 सोनू कुम्बु
2: आदरणीय श्रोता वृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्ने एफएम सुन्ने एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम नगरपालिका 5 सोलु खुम्बू

0: मनु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

भर्खर मात्र हमने मीठो गीत सुनी सकता छो जीवन छोटे सुने गीत पके गीत सुनेर दुईजना साथी मनोरंजन तो लिन्द हमीस एवटा मात्र गीत बाकी कार्यक्रम कंटी मंटीन समय में हम आई नहीं सकता छो साथी को फोन आए हम लिंचो नभ हम कार्यक्रम विदा मांगने एवटा गीत पके बाकी कतिजना साथी काम में हाला पके धेरेजना साथी काम में हूं कि असार साउन को बेला महीना में अलिक काम नहीं काम कर कतिजना साथी गोठालो मेलापात तीर हाला कतिजना साथी खाजा खाते कतिजना साथी स्कूल कलेज फर्कला जस्त सुखी अवस्था में भेपनी आपने स्वास्थ्य ख्याल करते स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते आपने स्वास्थ्य ख्याल करते अगड़ी बढ़ुला एटा गीत बाकी साथी फोन आक अब हम कार्यक्रम बाई बाई भेला में हम आई नहीं सकता आज धेरे जना साथी कल कर कल ट्राई करू प्रयास आपने भैसको को बावजूद हमला रेडियो सुनेर अंतिम समय समय साथ दिभा सब जना विशेष करीकन म रेडियो देखि आभार प्रकट करना चाहूँ रेर बंदकुटा का आवाज तब के रेडियो सेट अभी मोबाइल सेट समय पुर्वन भरपूर मात्रा में सहयोग करने प्राविधिक मित्र स्वर्गीय लमु शेर्पा विशेष करीकन आभार प्रकट करते अंतिम में एकदम मीठो गीत बाकी जुन राष्ट्रीय भाव ने सजे एकदम मीठो गीत रहोक मत लाल आस भू भीत को बोल रहे जिसमें आवाज गुण नारायण गोपाल कृष्ण प्रताप अधिकारी का आवास में सजेक एकदम मीठो गीत रहो मीठो गीत राष्ट्रीय भाव के गीत छद आज को कार्यक्रम गीत गीत को गोसाई बाट कार्यक्रम प्रस्तुता देवी के राय बिताना चाहूँ नमस्कार।

0: रेडियो FM 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: साथमा
3: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Studio FM, the studio time.
2: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदुतकु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु.
3: Wherever you are, stay connected with. Wherever you are, stay connected.